हाय नातूर, हाय नातूर, मेरे कन्ना विच एहो ही आवाज गूंज रही है, हाय नातूर, हाय नातूर। पुरजा दी सुपना कारवाली नूं दस्सिया ते कारवाली ने कहा, स्वामी जी जो आपां देखदे हां, जो सोचदे हां, ओहो कई वारी सानू सुपने विच नजर आंदा। तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इस करके ठीक नहीं समझदे कि इन्हां हथियार चुके ने, ये लड़ाइयां लड़दे ने, पर स्वामी जी साधु संत हिंदुस्तान विच होर भी बड़े ने, वो भी पुन्ना नूं जानदे ने, पर उन्हां हथियार नहीं चुके क्योंकि हथियार चुकण दी जाच नहीं। ये जिहड़ा सुपना देखिया है, ये हिंदुस्तान दे लोग कई मजहबां दे, कईआं जातां दे, ये दुखी ने क्योंकि तुरख मुगल जुलम पै करदे ने, हिंदुस्तानियां नूं परेशान करदे ने, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हाथ विच कृपाण फड़ी हिंदू धर्म दी रख्या वास्ते, हिंदुस्तानियां दी रख्या वास्ते, मजलूमां दी रख्या वास्ते, जिहड़े इन्हां फुल्लां नूं हिंदुस्तानियां नूं दुख दे रहे सन, उन्हां दी ढाल गुरु गोबिंद सिंह जी बने ने। पति जी सानू चाहिदा सी असी भी गुरु दी फौज विच हाजर होंदे, सेवा करदे, पर असी ते गुरु तों बेमुख हो गए हैं। ए गल्लां सुन के जसवंत राय कहन लगा, हां तू सच कहनी, गुरु लड़दा पिया साडे लोकां दे भले वास्ते, वो अपने वास्ते नहीं लड़दा, और मैं भी पैसे दे हंकार विच गुरु तो दूर हो गया, पर हुण मैं भी आनंदपुर साहब जावांगा, पर चल पहला देव सिख दे घर चलिए, देखिए तां सही उस बच्ची दा की हाल है। जसवंत राय अपनी घरवाली दे नाल ओ फुल लै के देव सिख दे घर वल तुर पिया, मन विच पछतावा कि मैनू की पता सी ओ बच्ची फुल दे नाल इन्ना प्यार।

सत्संग मिले सो तरिया मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा।

माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत।

के पवित्र वाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद कायो नहीं जन्म अकार्थ की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इना सारे श्लोकों विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते ने,

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होंदा, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तैनूं गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगदी, जांदियां भी देर नहीं लगदी। जे तैनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बता दिता है, सगों होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार विच बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़दा है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़दा है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे है की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? इह ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल ए है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा हुंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा वड्डा राजा सी, इंद्र जिस दा नाम सी। इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां। ऐ पलिया, तेनू तन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है उह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तैनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बंधिए जे रहना होवे, बहुता कुछ उत्थे बनाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात माल, रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, बई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ।

गलवकड़ी च लै लिया। गुरु अर्जन देव जी नू लै गए चुबारे ते, सत्कार कीता सारी बाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज नू दे दित्ती। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज धन्नवाद करदे होए बाबा मोहन जी दा, नंगी पैरी जो गए सन ते फिर अपने सिर ते रखी बाणी सरंदा लिया मोढे ते, ते नंगी पैरी वापस आ गए ते धन्नवाद कीता उत्थे अपने प्यारे परमात्मा मोहन।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उठापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतृण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहरा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे,

कहूँ पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथो ताहे कैसे। कहूँ नाद है के भली भांत बाजे कहूँ पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तु फिर तु भीख, कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत हो, कहूं

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरो विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण शाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

महत्वपूर्ण विद्वान सत्य कहे कि इसका निर्माण निर्माण निदान निदान संकट की संस्था की हजूरी देकर बड़ी अकीत जनाब में बैठी दूर का संजीव आप भी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी दे इतने अहम करे मसलियां के बीचों आपकी सफा कटे जो आपकी ने सोच लिया कर आप उत्तर बाद में जाना है एक गल नारी आज हो गई सब कुछ दूर पैदा आगे हो गई थी सब जी ने आप बड़े सुंदर अंदाज के नाल उस हिंदी से गलत गलत की हम सच संजीव विद्वान लोग बैठे कंकन जी रंजीत सिंह साहब जी रशिया साहब जी कांत जी मेरे अजीत अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सच संजीव जो संगीत है गाँव का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्नड़ गल पै गई नहीं कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गल का मजबूत न बन गल है आत्म गल है मेहनत जिन की सुपार है जिला मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की होगी नहीं मिलेगी पहली गल साढ़े तेरे अक्षर लग गया है ये तो आड़ है सचिंदी पैसा जी कहा तो हाली बता रहा बिल्कुल नहीं मिलता सी ये सिर्फ कंटन शुरू भूगल के पीछे है मैं दो गल कह के सात संगी दुनिया के दो फाइन आर्ट हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो कड़े काम गाँव के पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कोई स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आदि स्वरूप है ना परमेश्वर एक अलग बात है जब जो सू समझ है कि कीर्तन की है तो फिर सत्संग की आवाज की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे राज पच्ची में टाइम है राज तकरीबन 20-22 मिनट अभी समाप्ति करेंगे शब्द की चीज है आपे खुद चेला है आपे आपे हर सब चोट बनाई राग तकलीफ है जन्म करेंगे दावे नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है अच्छी आते हैं कि बिल्कुल प्रतीफ है आओ आपकी मदद एक बात मैं पूछ सकते मतलब तो नजीब से वाहे जी का।

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी पई है।

आप सब लोग सुखी बसो। इस जोगी राज ने ए गल कही ते तन गुरु नानक साहब कहन लगे, जोगी राज तुसी की किया सानू समझ नहीं आई, एक बारी फेर कहो। अज तक किसे ने ए सवाल नहीं सी कीता। गुरु साहबा नू घूर के देखिया ते जोगी राज कहंदा है, ए बालके ये ज्ञान ध्यान की बातें हैं, तुम नहीं जान सकते। गुरु साहब जी कहन लगे, असी जान नहीं सके, इसे वास्ते ता पूछिए। ते जोगी राज कहन लगा, ए बालके मैं इन लोगों को तीनों लोकों की बातें बता रहा हूं, तीनों लोकों में क्या हो रहा है मुझे तीनों लोकों की सोझी है कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। तो गुरु साहब जी कहने लगे, अच्छा चंगा फिर जोगी राज जरा ये दसो, तिना लोकां दा ज्ञान तो तुहानू है, तुहाडे सामने जड़ी माया वाली संदूकड़ी सी ओ किथे है। जोगी राज ने सामने देखिया ते संदूकड़ी कोई नहीं, जिन्ने लोकी बैठे सन ओ सारे हस पए। ते गुरु साहब जी कहन लगे, भाई तेरी संदूकड़ी किथे। ते जोगी राज कहंदा है, गुरु साहबां नूं बताओ मेरी संदूकड़ी कहां है। ते गुरु साहब जी आस

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनू ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की

पाछे कछु ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई होई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहिबां ने कहा, भाई दुनिया नू क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नू कहना है कि मैं

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी।

भगत कबीर साहब दा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ए बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान दा एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बन्नियां ने, गला विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई वह संत नहीं, पता है वह कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान करदे।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुल्ले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने, सुचता इन्नी रखदे ने

वसुधा खोद करे तोय चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बाल देने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

इस पेखी संत दे कोल ए तनी आदमी बैठ गए, गल्ला बातां करदा रहा। बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया वो सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांस

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपन जे तो आड़ा मन नहीं जुड़ता ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

मेरे गलों ये झगड़ा ला ले। है भाई मैं पखंड नहीं करदा, उस परमेश्वर दा नाम जपे है उदे नाल मिल गया। है भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा तू

माया वास्ते इंसान किन्ने झूठ बोलता पर परमेश्वर दे नाम दे लागे नहीं जांदा। एक महापुरुष अपने श्रद्धालु दे घर कुछ समा रहे तुरन लगे ते घर वालिया ने रस्ते वास्ते महापुरुषां लई चार आलू दे परौंठे बना दिते। महापुरुष तुरे एक लालची हग जिहड़ा सी उन्हें देखिया कि महापुरुष अपने श्रद्धालु दे घरों बाहर निकले ने इन्हां कोल जरूर माया होवेगी ते इन्हां दे नाल ही चलना वा इन्हां दा सेवक बन के जदों दा लगा माया कढ लवांगा। महापुरशां नूं कहन लगा महापुरशो मैनू अपना सेवक बना लो।

अपने कपड़े दे के कहन लगे तू कपड़े संभाल ते मैं जरा ही स्नान कर लवां। कहन लगा महापुरुषो तुसी फिकर ना करो मैं चंगी तरह संभाल करा। महापुरुष ते नहाण चले गए ते ए जिहड़ा लालची सी ए जल्दी जल्दी महापुरुषां दे कपड़े खोलन लग पे। पैसा तो कोई ना निकलिया पर आलुआं दे चार परौंठे निकल आए। इन्हें सोचिया चलो जो मिलिया ओह ही सही। इन्हें जल्दी जल्दी एक आलुआं वाला परौंठा खा लिया ते तीन उसी तरह बन दिते। महापुरुष इशनान करके बाहर निकले कपड़े पाए कहन लगे आ भाई तेनू भी भुख लगी होनी है चार परौंठे ने दो तू खा ला दो मैं खा लें। जदों पौना खोलिया ते परौंठे तीन निकले। महापुरुष कहन लगे भाई परौंठे ते चार सीगे एक परौंठा तू ते नहीं खाद। ए लालची कहन लगा महापुरुष मैनू ते पता ही नहीं कि तुहाडे कोल परौंठे भी हैगे। महापुरुष कहन लगे होर कोई आया नहीं तेरे बगैर कौन खा सकदा सच दस परौंठा तू ही खादा है। कहन लगा महापुरुष कमाल हो गई मैं तो परौंठा देखिया ही नहीं ते खाना कितों। महापुरुष समझ गए कि परौंठा जरूर इन्हें खादा ते ओ लालची भी समझ गया कि महापुरुषां नूं पता लग गया कि मैं परौंठा खादा। पर कहन लगा ये जो भी कर लैण मैं केड़ा मनना है कि परौंठा मैं खादा। ओ परौंठे खा के अगां तुर पए। नदी पार करनी सी ते महापुरुष कहन लगे भाई सच दस जे तू सच ना बोलिया ते आपां दोवे डुब जावांगे। नदी पार करनी है सच दस परौंठा तू खादा है। कहन लगा महापुरुष कमाल हो गई जद मैं परौंठा देखा ही नहीं ते खाना कितों सी। नदी पार कर ली। महापुरुष कहन लगे बड़ा ही ठीठ है ये तो मनदा ही नहीं ते ओ लालची अंदरों अंदरी हसदा जांदा है ते कहिंदा महापुरुषो लालो जिन्ना जोर लाना है मैं किहड़ा मनना है कि परौंठा मैं खादा है। और अगे गए जंगल आया जंगल नूं अग लगी सी। महापुरुष कहन लगे भाई अग लगी जे झूठ बोलिया आपां दोनों सड़ जावांगे हुण तां दस दे परौंठा तू ही खादा है। कहन लगा महापुरुषो रब दी सहु मैं परौंठा देखे नहीं ते खाना कित्थों सी। अग भी पार कर ली। महापुरुष कहन लगे ए तां बड़ा ही ढीठ निकले मनदा ही नहीं ते ओ भी कही जांदा महापुरुषो लालो हां जोर जिन्ना लाना मैं केड़ा मनना है। अगे एक माया दा ढेर आया महापुरुषा ने उस माया दे तीन हिस्से कीते ते ओ ठग कहन लगा महाराज आदमी आपा दो आ ते माया दे तीन हिस्से क्यों कीते। ते महापुरुष कहन लगे भाई एक हिस्सा ते तेरा ते एक मेरा ते एक हिस्सा ओदा जिन्ने ओ परौंठा खादा सी जे ओ इत्थे हुंदा ते अपना हिस्सा ओ भी लै लैंदा। ते जदों ए सुनिया ते छाल मार के उस ढेर ते जा पे नाले माया फड़ ली ते नाले कहिंदा महापुरुष मारो भावे रखो ये ढेर मेनू दे दियो क्योंकि वह परौंठा मैं ही खादा सी। ते महापुरुष कहन लगे भाई इस माया ने ते तेरे नाल नहीं जाना जदू तेन सच बोलन वास्ते कहा ते रब दी सहु खा गए माया दा सवाल आया ते सच बोल पिया पर ए माया तेरे नाल नहीं जाने ये कल खत्म हो सकती है पर परमेश्वर दा नाम ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

मन क्यों डोलद? मन के डोलन का कारण की है? क्योंकि मन का कोई आसरा नहीं, मन का कोई सहारा नहीं। सहत उपदेश देंदे यह गल समझ आ रहे ने, सतगुर संग ना ही मन डोल। जे मन नूं यह यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन नहीं डोल, फिर मन नूं एक दलासा है, मन नूं एक भरोसा है कि गुरु मेरे नाल है। पढ़ते तो आप जरूर हां गुरु मेरे संग सदा है नाले, पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। जे भरोसा हो जाए तो वाकई मन डोलदा नहीं। पर सतगुरु ने ख्याल दिता है कि मन के डोलन के कुछ कारण हैं, कि मन क्यों डोल जाता है। चार कारण कुछ सियाणिया ने गिण के दसी। इस मन नूं डर है चार प्रकार का, जिस कारण यह मन डोल जाता है। वो केड़ा है? पहला सरकार दा, ते दूसरा है समाज दा, तीसरा है रोजी दा, चौथा है मौत दा। ये चार प्रकार दा डर मन्निया गया। हुण जे इन्हां तों बच जाए मन नूं, यह निश्चा यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन डोलदा नहीं। इन्हां चारियां दी गल सतगुरु ने बाणी विच कही है कि सरकार का डर कैसे